0: गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, जिसने गोविंद यो बताए। गुरु ए तो परम आदरणीय अने वंदनीय होय छे। जूना जमाना मा राजा महाराजाओ राजगुरु नी सलाह सूचन प्रमाणे राजकाज संभाळता। गुरु नी गादी पण अलग अने सन्मान जळवाय ती रीते राखवामां आवती। आम जो गुरु पोतानी गुरुता जाळवी राखे तो समाज सन्मानी ज अने शिष्यो पण उत्तम पैदा थाय। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर भक्ति संगीत। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता।

0: चिते प्रसन्ने भुवनम् प्रसन्नम् चितम् विष्णे भुवनम् विष्णम् अतो विलासो यदि ते सुखे स्यात् चित प्रसादे प्रथम यत्स्वे। मन प्रसन्न होय तो सर्व जगत प्रसन्न देखाशे, मन खिन्न हशे तो आखू जगत खिन्न देखाशे। एटले सुखनी आकांक्षा जो होय तो कायम मन ने प्रसन्न राखवानु प्रयत्न करो जोई। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

झननन झननन झनक झांझरी बजे बांसुरी तट जमुना तट नटवर नट खट रासर में गोपी मन भावन रा

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पे मैं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे दिलबर लेके आया हूँ वापस सांसों की रूहानियत दिल की धड़कन दिल की आवाज 2.0। दोस्तों जब भी हम प्यार इश्क मोहब्बत उसके बारे में सोचते हैं या फिर ये जब हमें होता है तब हम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछते पर हम कुछ चीजें अपने जहन में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिठा लेते हैं। यानी कि मैं प्यार करता हूं तो मेरा प्यार ऐसा होना चाहिए, सामने वाला जो बंदा या बंदी है जिससे आपको प्यार हो चुका है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, या फिर मैं उसके लिए ये करूंगा वो करूंगा। पर क्या जीवन में आप जब भी

प्यार को महसूस करते हैं, तब ये ही जरूरी है कि आप कैसे और क्या किसके साथ करें। या फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम केवल किसी इंसान के लिए प्यार या मोहब्बत जताकर अपनी जिंदगानी को इतनी सुंदर बना पाएंगे, या फिर हमें भी उस प्यार में डूबने की कोई रीजन, कोई कहानी या फिर कोई पोयम ढूंढनी पड़ेगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना पाएंगे या फिर बनाते हैं कि नहीं, ये भी सोचना चाहिए। चलिए आज के शो पर हम कोई नई कहानी नहीं सुनते हैं या फिर नए किसी किस्से के बारे में बात नहीं करते, पर आज हम बात करेंगे क्या हम खुद प्यार में डूबने के बाद कुछ रूहानियत वाली बात या फिर अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाते हैं या नहीं, या फिर कैसे बनाना चाहिए। इसी बात पर थोड़ी सी मीठी नोकझोंक के साथ हम चर्चा करेंगे, पर अभी वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे दिलबर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

प्यार हो जाता है, प्यार में कुछ बदलाव लाइफ में आते भी हैं, पर मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले वैसे ही, क्या हम अपनी लाइफ को रोमांटिक बना सकते हैं या फिर बनाते हैं? क्या किसी और को ये महसूस होता है कि ये बंदा या बंदी प्यार में है? क्योंकि ये बहुत ही इश्क की मूड से अपनी लाइफ को जी रहा है। अगर इस बात पर गौर से सोचेंगे तो नहीं, यही जवाब आपके दिल से निकलकर ज्यादातर आएगा। क्योंकि सोचिए, आप अपने लाइफ में जो चीजें अगर प्यार हो जाने के बाद बदलने की जगह वो रोमांटिक

ठीक तौर पर नहीं कर पा रहे, तो फिर सोचिए कि आपका प्यार कितना आप में बसा है। जैसे कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबकी लाइफ में आप जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं या जिससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उससे आपका प्यार वाला रिश्ता कैसा है, या फिर आप जब प्यार में पड़ते हैं या फिर उसके साथ आपका रोमांटिक मूड है कि नहीं। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये काम, जॉब या फिर आपकी जो नौकरी है जहाँ से पैसे आने वाले हैं, वो चीज़ें बेरंग हो जाए या फिर वो आपको मिले ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में? क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर पड़ता है तो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, ये जानना, यही प्यार की निशानी है। अगर आप प्यार में हैं या फिर आप रोमांटिक मूड में हैं, तो आप जो काम करते हैं उसमें भी आपकी रोमांटिज्म आनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, तो अगर आप इश्क मिजाजी हैं तो उसमें इश्क होना चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपका मूड रोमांटिक है तो आप गाड़ी कितनी इत्मीनान से चलाएंगे। अगर आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ या फिर आपकी नौकरी उस पे है, अगर आपका रोमांटिक मूड है या फिर रोमांटिज्म आप में है, तो आपका वो काम, उसमें जो लव्स आएंगे वो सारे रोमांटिक होंगे, और वो काम आपको बड़ा सा आनंद भी देगा, और जिसके लिए कर रहे हैं यानी आपके बॉस के लिए या फिर आपकी फर्म के लिए, तो वहां से भी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ये सोच कर देखिए कि आपकी लाइफ की जॉब जो है उसके लिए, उसके प्रति आपका रोमांटिक मूड या भाव है या नहीं। अगर नहीं है तो बनाकर देखिए, यही तो सच्चा प्यार है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद कुछ ऐसी ही रूहानी बातें करने के लिए 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

मेरा स्वामी या मेरा सज्जन इतना खूबसूरत है कि क्या बात करूं मैं। ये अल्फाज ज्यादातर हमें सुनने को मिलते हैं किसी भी प्यार में डूबे व्यक्ति के मुंह से, पर कभी आप या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो प्यार में है, इश्क में है, या फिर ये सोचता है कि प्यार लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, तो उसे मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को भी कुछ संवारने के बाद या संवारने से पहले निहारना चाहिए। अपने आप को देखकर अपनी खूबसूरती के बारे में भी कुछ बातें करनी चाहिए, क्योंकि दिन में सुबह उठने के बाद हमारे शास्त्र और पुराण भी कहते हैं कि आप अपनी हस्तरेखाएं देखिए, फिर आप अपना चेहरा देखिए, अपने मुंह को साफ कीजिए और उसकी आंखों में झांककर नए दिन की नई रोशनी के साथ कुछ नया करने की या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें प्यार से, इत्मीनान से सफलता प्राप्त करने की बात को छूइए। पर ये तब हो सकता है जब आप अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को प्यार करते हो। जी हाँ, बहुत सारी खामियां हो सकती है, कहीं पे तील है, कहीं पे मस्सा है, कहीं थोड़ी सी टेढ़ी नाक है, या फिर थोड़े से डार्क सर्कल भी है, पिंपल्स भी है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी जो दूसरों से आपके पास बेहतर है। कभी उसे तो अप्रिशिएशन कर लीजिए, कभी उसके बारे में सोच लीजिए और सोचिए कि ऊपर वाले ने क्या खूब और इत्मीनान से आपको वो वाली खूबी दी है। क्योंकि आप अगर प्यार में हैं तो आपका जर्रा जर्रा प्यार से महकना चाहिए। मीरा बाई या राधा, वो जैसे भी सजती थी, जैसी भी थी, वो केवल ही केवल कृष्ण और कान्हा को प्यार करती थी, ऐसा नहीं था। वो अपने आप को भी भक्तिमय या फिर प्रेम जिसमें भक्ति की हर बूंद भरी हुई थी, उस भाव से अपने आप को भी सजाया करती थी। कभी अपने आप को ही कृष्ण माना करती थी। यही चीज तो हमें भी अपनी जिंदगानी में लानी है कि हम अपने चेहरे से, अपनी बॉडी से भी कुछ अच्छी बातें सीखें और उसके बारे में अपने को यानी अपने दिल को एहसास कराएं। आइए ऐसी ही कुछ अपने जहन में, अपने दिल में प्यार वाली बातों का कैसे समय दर समय याद किया जा सकता है उस पे बात करेंगे। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, कहीं जाइएगा मत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

लोगों के मुंह से हम ये शिकायत सुनते हैं कि हमें प्यार हुआ तो हम में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, हम में थोड़ी सी पजेसिवनेस बढ़ गई, हमें हमारी चीज़ें कोई छूता है तो पसंद नहीं आता है। वो क्या कहते हैं, प्यार के साइड इफेक्ट्स। पर मेरा हरगिज इससे थोड़ा अलग से सोचना है। अगर प्यार ही हुआ है, अगर आपको किसी से प्यार हुआ है और वो व्यक्ति भी आपसे इजहार कर चुका है, तो फिर जो प्यार होता है ना वो कभी टूटता नहीं है। लोग बोलते हैं तो फिर ब्रेकअप क्या होता है, ब्रेकअप ये होता है कि कुछ चीजों में आप जैसी सोच रहे हो वैसी ही एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, इसलिए आप अलग हो जाते हैं। पर क्या कह सकते हैं कि आपने कभी वो प्यार भुला दिया, क्योंकि आप गिनती भी अगर करते हैं तो पहला बार ये वाली बात आपके जहन में रहती ही है। और छोड़िए ये पहले प्यार वाली बात, मेरा तो ये कहना है कि आप जब प्यार करते हैं तो आपके जर्रे जर्रे से प्यार की बूंदे निकलनी चाहिए। यानी कि आपका जो लहजा है, आप किसी से बात करते हैं तो वो प्यार भरी होती है। जिससे आप प्यार करते हैं उसी से नहीं, पर आपके सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी से भी बात होती है तो आपको ये याद रखना है कि आपको अगर प्यार हुआ है तो प्यार दिखाना भी जरूरी है, प्यार बांटना भी जरूरी है। और यही चीज तो है, फिर आप देखिए अपनी आंखों से आपको सब कुछ प्यारमय दिखेगा। और यही फीलिंग्स आपके प्यार के एहसास के साथ दूसरों को भी जोड़ेगी, यानी आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही प्यार में पागल तो है, पर हमारे लिए भी उतना ही प्यार बयां भी करते हैं। और जब आपको किसी का भी साथ चाहिए तो सब जुड़ जाते हैं। वो कहती है ना राधा कि मुझे जंगल, पेड़, पौधे, बांसुरी, कृष्ण की कोई भी चीज ले लो या वृंदावन की रज को भी ले लो, इस सब में कान्हा जी का प्यार गुला हुआ मिलता है। यही तो बात है कि ऊपर वाला भी अगर किसी को प्यार करता है तो उसके सामने हार जाता है, उसका हो जाता है, ये नहीं कि उसको अपना बना ले। इसी बात पे हो चुका है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार मैं वापिस आने वाला हूं, कहीं जाइएगा मत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर

वापिस मैं आपका स्वागत करता हूँ। सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0 और मैं आरजे दिलबर। हम बात कर रहे थे कि अगर प्यार हमें होता है या फिर हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए, अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने रिश्तों से भी प्यार करना चाहिए। ये हरगिज नहीं हो सकता कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के लिए आप सारी दुनिया के सामने लड़ जाए, ठीक है, पर उससे पहले आप अपने रिश्तों को प्यार से मनाने की, जो आपके साथ चल रहे थे, जो आपके साथ होने का आपको एहसास दे रहे थे, जिन्होंने आपको प्यार दिया या फिर प्यार क्या है वो सिखाया, उन्हें आप एक मौका तक नहीं देते। आप क्या उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल नहीं सकते? मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आपके प्यार को वो लोग समझ पाए, 100% आपको सपोर्ट करें, पर इतना तो हो सकता है कि अब तक जब तक आप किसी प्यार में पागल होने की कगार तक नहीं पहुंचे, या फिर आपको नहीं लगा था कि मैं इनके सिवा जीना नहीं सीख पाऊंगा, तब तक अब जिनके भरोसे थे उन व्यक्तियों को, उन रिश्तों को, उनके साथ आपकी जो फीलिंग्स थी उन्हें आप साझा करते आए थे, क्या उनके पास एक मौका नहीं होना चाहिए कि वो आपके प्यार को समझने के लिए कोई थोड़ी सी भी कोशिश करें, और उस कोशिश के लिए आप उन्हें मौका दें, आप अपनी बात को रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जनरेशन में ये ज्यादा हो रहा है कि बस हमने तो एक बार कह दिया, उन्हें मान लेना चाहिए था। कभी आपने सोचा है कि आपको भी मनाने में घंटों लगे थे उन माँ बाप को, भाई बहन को, तो आपकी बात वो भी कैसे एक ही बार में मान जाए? आपको उसको मनाने के लिए बहुत सारे रीजन और ठोस वजह देनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे प्यार ही करते हैं। आइए कुछ ऐसी बातों को और भी आगे हम जानेंगे, मानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।

प्यार केवल करना जरूरी नहीं, उसको महसूस करना भी जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

इजहार होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी मम्मी, अपने पापा से, अपने भाई बहन से, अपने डॉगी से या अपने दोस्तों से नॉर्मली इजहार करता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, करती हूँ और मुझे आप अच्छे लगते हो, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ या बननी की सोच रहा हूँ। तो वही तो है कि एक उम्र के बाद जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने की उम्र में पहुंचते हैं तब आप किसी और रिश्तों के साथ प्यार को इजहार करना भूल जाते हैं। यही बात आज करनी है कि क्यों नहीं हो पाता। आप कभी प्यार इजहार करने के लिए आपको आई लव यू या शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, पर जैसे छोटे थे ना तो आप मम्मी पापा को आपको ये पसंद है ना तो मैं लेके आई, उसी तरीके से आपकी एक उम्र हो जाने के बाद अगर आप कुछ बना के उन्हें खिलाए, किसी रेस्टोरेंट में ले जाए, अपने दोस्तों को भी, आप बचपन से उनके साथ है तो आप सोचते रहते थे कि कब उनका बर्थडे आए और कब क्या उसे पसंदीदा गिफ्ट दे। बड़े हो जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, अरे चलता है यार, ये तो जानजी है, चलो बस कोई बात नहीं, गिफ्ट क्या चाहिए यार, बोल तुझे कहाँ ले जाए, इतना करके खत्म कर लेते। उसमें फीलिंग्स कहाँ पे है, उसमें प्यार कहाँ पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को जितना प्यार करते हैं उतना अपने रिश्तों को भी प्यार कीजिए। अपनी लाइफ में, आपके बिहेवियर में रोमांटिज्म आना चाहिए, चाहे दोस्त हो, भाई बहन हो, आपके सहकर्मचारी हो, चाहे आपके घर में कोई पहली बार आया है मेहमान बनकर, तो उसे भी आप रिस्पेक्ट दे के भी आप प्यार जता सकते हैं। प्यार में बस यही तो बात है कि मीठे दो लफ्ज। और आखिर में थैंक यू, जो इजीली हम सबको चिपका देते हैं पर जिसे प्यार करते हैं उसे नहीं कहते। बोलते हैं कि प्यार में क्यों थैंक यू बोलना, अरे प्यार में थैंक यू बोलना जरूरी नहीं, उसको महसूस करना जरूरी नहीं, पर उसे एक दो बार बयां करने से आपका प्यार थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा हो जाने के बाद तो फिर आपको पता ही है रबड़ी हो जाती है और सबसे अच्छी वही तो चीज है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मौका मिलता है तब अपने रिश्तों के साथ थोड़ा सा आप रोमांटिक रोमांटिज्म, प्यार वाली फीलिंग्स उसे साझा कीजिए, उनकी केयर करते हैं, वो एहसास भी दिलवाइए, तभी तो आपको अपना प्यार उसी तरीके से बहुत ही जल्द और मजबूती से मिलेगा। बात को आगे बढ़ाएंगे 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आरजे दिलबर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

हम किसी इंसान के लिए प्यार जब इजहार करते हैं तो उसके लिए घंटों, दिनों, महीनों तक वेट करते हैं। पर किसी इंसान के साथ आपका कुछ बिगड़ जाता है और आप कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ, यानी कि इजहार करने की जो प्रोसेस है उसमें एक डिस्टेंस आ जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि प्यार में ब्रेकअप यानी प्यार खत्म हो जाना ये वाली बात नहीं है। प्यार तो रहता है पर अब एक दूसरे को उस प्यार की कद्र नहीं है, या फिर उसका एहसास नहीं है, या फिर एहसास है तो उस प्यार के साथ में रहना मुमकिन नहीं है। छोड़िए वो चीज़ें, पर ये बात है कि अगर उसे पाने के लिए वक्त दे रहे हैं, उसके लिए घंटों, दिनों, महीनों तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब वो चीज़ें आपके पास से निकल जाती हैं, ब्रेकअप हो जाता है, तब आप लाइफ को क्यों वक्त नहीं देते? तब आप छोड़ देते हैं सारे काम, जॉब, माहौल, आसपास के जो रिश्ते हैं उनसे भी आप मुंह मोड़ लेते हैं। कभी तो बहुत सारे लोग, आज की जेंजी, अपने जीवन को समाप्त करने की ओर चली जाती है, समाप्त नहीं कर पाती तो मेंटल सिचुएशन में इतना खराब पोजीशन वो डाल देती है कि वहां से आगे जाना या फिर उसके बाद की जिंदगी या फिर उसके बाद उनकी लाइफ में जो व्यक्ति आता है उसके लिए वो सारी चीजें एकदम से तितर बितर बिखर जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? आपकी दोहरी नीति नहीं हो सकती। यही तो मुझे कहना है कि प्यार में भी अगर आप सच्चे हैं, आपने सच्चा प्यार किया है और आपकी वजह से किसी और का दिल टूटा है, या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा है, या आपका दिल किसी ने तोड़ा है, सारी चीजों में वक्त, समय, टाइम, उस चीज को, उस एहसास को थोड़ा सा जीना चाहिए, तभी तो आप अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म डिसीजन लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उस वक्त भी आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि प्यार जिंदगी से नहीं गया, प्यार का मायना, प्यार का जो वो नाम था, प्यार का जो वो रिश्ता था, वो उस रिश्ते में थोड़ी सी खटाश, मनमुटाव, या फिर कहते हैं कि दरार आ गई, शायद वो कभी भरेगी भी नहीं, पर वो दरार दीवार पर रहेगी जब तक वो दीवार है, यानी कि आप है, तो फिर क्यों आप प्यार को वक्त और मौका नहीं देते? सोचिएगा, और सही बात लगती है तो हर बार कहीं से भी

दिल दुखे। कहीं से भी आपको अपने दिल से छेड़खानी होते हुए नजर आए तो वहां से आगे बढ़िए, समय और वक्त दीजिए। लाइफ है, उसे शॉर्ट करने की नहीं, उसे और प्यार से जीने की सोच लीजिए। फिर से मिलता हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

अपने मायने, अपने किस्से और कहानी हो सकते हैं। बस किसी व्यक्ति से प्यार करना और उसके सामने अपने आप से, अपने जीवन से प्यार को हटा देना, ये सही नहीं है। चलिए एक छोटी सी बात हमारे लिसनर ने भेजी है, मानसी ने। मानसी और पारस आज मुकम्मल रिश्ते में नहीं है, जिन्हें आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि ब्रेकअप, पर दोनों आज भी तकरीबन 10-15 साल के बाद भी मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ की कुछ ऐसी मुश्किलियां जिन्हें लगता है कि एक दूसरे से सॉल्व हो सकती है उसके बारे में बात भी करते हैं। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके ब्रेकअप के बाद आप मिले, पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर प्यार और फीलिंग्स आपके पास रहती है तो सिचुएशनल आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियां साथ में ना रहने का बोल सकती है, वैसा कर सकती है, पर उसके बाद में कि आपके प्यार की इंतहा ये होनी चाहिए कि आप एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें, या फिर एक दूसरे के लिए जब वक्त आता है मदद का तब आप मदद भी ना कर पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब दिल किसी के लिए टूटता है तो बहुत सारी बद्दुआएं भी निकलती हैं, पर याद रखिएगा कि प्यार सच्चा है और दिल तोड़ने की कोशिश एक दूसरे ने नहीं की हो और सिचुएशन की वजह से आपका दिल टूटता है, आपके रिश्ते मुकम्मल नाम या रिश्ता नहीं बना पाते, तब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्यार को संजोए रखना यही एक बड़ी बात होनी चाहिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने वर्क से प्यार कीजिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए और अपने जीवन में आने वाले हर वो शख्स जिसको आप सम्मान दे सकते हैं, आदर कर सकते हैं, उसका कीजिए। यही रिश्ते, यही बातें आप अगर प्यार को मानते हैं तो कर पाएंगे, और कर पाए तो याद रखिएगा लाइफ में आपका प्यार किसी न किसी मोड़ पर आकर आपसे ये कहेगा कि तुम्हारा प्यार इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ऊपर है। और हर एक बंदा या बंदी यही चाहता है कि मैंने जो जीवन में किया हो पर मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरे रिश्ते वो सच्चे हो और उसका एहसास सामने वाले को एक ना एक दिन हो। यही तो दुनिया की रीत है और जिंदगानी की यही जीत है। इसी बात पे दोस्तों चलो फिर मैं भी अलविदा कहूंगा, एक विराम के बाद वापिस आ रहा हूं। कैसे आप मेरे साथ बातें कर पाएंगे, अपने रिस्पॉन्स दे पाएंगे उसके बारे में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है।
2: जबकि

0: तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
0: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी,
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छान कर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे, तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में

0: काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: चिमक्का, तुम्हें बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ,
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता तिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं।
3: हाँ।
2: ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता

0: साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये रो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
2: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे इसको भी डालो।
2: हाँ, ये देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना

0: कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
3: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली,

ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

बाक्का पालन पुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

पक्का पालनपुरी नी ओळख इतले ट्यून रहे मस्त रहे समृद्ध रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

9666888 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

शहर नो अवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानु टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता अने विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम अवाज ने वाचा आपतु एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।

नाम है कृष्ण चंद्र जी। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में लिखा है, इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। महानुभव, मैं न तो कोई साधु सन्यासी हूँ, न कोई महात्मा धर्मात्मा, न श्री 108 स्वामी गहम गहमानंद का चेला हूँ, न जड़ी बूटियों वाला सूफी गुरमुख सी मजेला हूँ, न मैं वैद्य हूँ, न डॉक्टर, न कोई फिल्म स्टार हूँ, न राजनीतिज्ञ। मैं तो केवल एक गधा हूँ जिसे बचपन के दुष्कर्मों के कारण समाचार पत्र पढ़ने का घातक रोग लग गया था। होते होते यह रोग यहाँ तक बढ़ गया कि मैंने ईंटें धोने का काम छोड़कर केवल समाचार पत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। उन दिनों मेरा मालिक दब्बू कुंभार था, जो बाराबंकी में रहता था, जहाँ के गधे बहुत प्रसिद्ध है, और सैयद करामत अली साहब बारेटला की कोठी पर ईंटें धोने का काम करता था। सैयद करामत अली साहब लखनऊ के एक माने हुए बैरिस्टर थे और अपने पैतृक नगर बाराबंकी में एक आलीशान कोठी स्वयं अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। सैयद साहब को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए अपनी कोठी का जो भाग उन्होंने सबसे पहले बनवाया वह उनकी लाइब्रेरी का हाल तथा रीडिंग रूम था, जिसमें वह प्रातःकाल आकर बैठ जाती। वह बारह बरामदे में कुर्सी डालकर समाचार पत्र पढ़ती और ईंटें धोने वालों की निगरानी भी करते। उन्हीं दिनों मुझे समाचार पत्र पढ़ने का चस्का पड़ा। होता अधिकतर यूं था कि इधर मैंने एक उठती हुई दीवार के नीचे ईंटें फेंकी, उधर भागता हुआ रीडिंग रूम की ओर चला गया। बैरिस्टर साहब समाचार पत्र पढ़ने में इतने लीन होते कि उन्हें मेरे आने की खबर तक न होती और मैं उनके पीछे खड़ा होकर समाचार पत्र का अध्ययन शुरू कर देता। बढ़ते बढ़ते ये शौक यहाँ तक बढ़ा कि बहुधा मैं बैरिस्टर साहब से पहले ही समाचार पत्र पढ़ने पहुँच जाता। बल्कि प्रायः ऐसा भी हुआ कि समाचार पत्र का पहला पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ और वह सिनेमा के विज्ञापनों वाले पन्ने मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं न जाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। मैं कह रहा हूँ ओ, ईडन, आइजनहावर, बुलगानीन फिर मुलाकात करेंगे और वह कह रहे हैं आहा, हजरतगंज में दिलीप कुमार और निम्मी की नई फिल्म आ रही है। मैं कह रहा हूँ चच, सिकंदरिया की हवाई दुर्घटना में 12 मुसाफिर मर गए और वह कह रहे हैं बाप रे बाप, सोने का भाव फिर बढ़ गया है। बस इसी प्रकार हमारा यह सिलसिला चलता रहता, यहाँ तक कि मेरा मालिक ईंटें गिनकर और मिस्त्री के हवाले करके वापस आ जाता और मेरी पीठ पर जोर से एक कोड़ा मारकर मुझे ईंटें धोने के लिए ले जाता, लेकिन बैरिस्टर साहब मुझे कुछ न कहते। दूसरे फेरे में जब मैं वापस आता तो वह स्वयं समाचार पत्र का अगला पन्ना उठाकर मुझे दे देते और यदि मैं पूरा पढ़ चुका होता तो भीतर लाइब्रेरी से कोई पुस्तक निकाल लाते और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते। यह जो मैं पढ़ना और बोलना सीख गया हूँ तो इसे सैयद साहब का ही चमत्कार समझिए या उनकी कृपा दृष्टि, क्योंकि सैयद साहब को समाचार पत्र पढ़ते हुए खबरों पर बहस करने और पुस्तकों को ऊंचे स्वर में पढ़ने तथा पढ़ते हुए उन पर टिप्पणी करने की बुरी आदत थी। यहाँ जिन स्थान पर वह कोठी बनवा रहे थे उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिससे वह ऐसी बहस कर सके। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त था, बस मैं एक गधा उन्हें मिला। परंतु इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, वास्तव में वह केवल बातचीत करना चाहते थे, किसी से अपने मन की बातें कहना चाहते थे। गधे के बजाय खरगोश भी उनकी संगति में रहता तो महापंडित बन जाता। सैयद साहब मेरे प्रति बड़ा स्नेह प्रकट करते थे और प्रायः कहा करते थे, अफसोस तुम गधे हो, अगर आदमी के बच्चे होते तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। सैयद साहब की कोई संतान न थी। खैर, करनी भगवान की यह हुई कि एक दिन सैयद करामत अली शाह की कोठी तैयार हो गई और मेरे मालिक को और मुझे भी वहाँ के काम से छुट्टी मिल गई। फिर उसी रात धब्बू कुम्हार ने ताड़ी पीकर मुझे डंडे से खूब पीटा और घर के बाहर निकाल दिया और खाने के लिए घास भी न दी। मेरा दोष यह बताया कि मैं ईंटे कम ढोता था और समाचार पत्र अधिक पढ़ता था और कहा मुझे ईंटे धोने वाला गधा चाहिए, समाचार पत्र पढ़ने वाला गधा नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र। कहीं मत जाइएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। रात भर भूखा प्यासा मैं धब्बू कुम्हार के घर के बाहर शीत में ठुठुरता रहा। मैंने निश्चय कर लिया कि एक दिन निकलते ही सैयद करामत अली साहब की कोठी पर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ईंटे धोने पर नहीं तो पुस्तकें ढोने पर ही मुझे नौकर रख लीजिए। शेक्सपियर से लेकर बेढम मूजी तक मैंने प्रत्येक लेखक की पुस्तकें पढ़ी है और जो कुछ मैंने उन लेखकों के संबंध में जानता हूँ वह कोई दूसरा गधा नहीं जान सकता। मुझे पूरी आशा थी कि सैयद साहब तुरंत मुझे रख लेंगे, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि जब मैं सैयद साहब की कोठी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि रातों रात कोठी पर फसादियों ने हमला कर दिया। सैयद करामत अली साहब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। फसादियों में लाहौर के गंडासी फल विक्रेता भी थे, जिनके लाहौरी दरवाजे के बाहर फलों की बहुत बड़ी दुकान और मॉडल टाउन में एक आलीशान कोठी थी। इस हिसाब से एक आलीशान कोठी उन्हें यहाँ भी मिलनी चाहिए थी। सौ भगवान की कृपा से उन्हें सैयद करामत अली साहब की नई बनाई कोठी मिल गई। जब मैं वहां पहुंचा तो गंडासी लाइब्रेरी के समस्त पुस्तकें एक एक करके बाहर फेंक रहे थे और लाइब्रेरी को फलों से भर रहे थे। ये शेक्सपियर का सेट गया और तरबूजों का टोकरा भीतर आया, ये गालिब के दीवान बाहर फेंके गए और मलिहाबाद के आम भीतर रखे गए, ये खलील जिब्रान गए और खरबूजे आए। थोड़े समय के बाद सब पुस्तकें बाहर थी और सब फल भीतर। अफलातून के स्थान पर आलू बुखारे, शुक्रात के स्थान पर सीताफल, जोश के स्थान पर जामुन, मोमिन के स्थान पर मौसम्बी, सैली के स्थान पर सहतूत, किट्स के स्थान पर ककड़िया, शुक्रात के स्थान पर बादाम, कृष्णचंद्र के स्थान पर केले और लहमत के स्थान पर लीमू भरे हुए थे। पुस्तकों की यह दुर्गत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें एक एक करके उठाकर अपनी पीठ पर लादने लगा। इतने में गंडासी अपनी फलों की लाइब्रेरी से बाहर निकल आए और एक नौकर से कहने लगे, इस गधे की पीठ पर सारी पुस्तकें लाद दो और एक फेरे में न जाए तो 8-10 फेरे करके ये सब पुस्तकें एक लारी में भरकर लखनऊ ले आओ और नखास में बेच डालो। अतएव गंडासी के नौकर ने ऐसा ही किया। मैं दिन भर पुस्तकें लाद लाद कर लारी तक पहुंचाता रहा और जब शाम हो गई तो अंतिम पुस्तक की लारी भी पहुंच गई। तब कहीं गंडासी के नौकर ने मुझे छोड़ा, मेरी पीठ पर उसने जोर का एक कोड़ा जमाया और मुझे लात मार कर वहां से भगा दिया। मैंने सोचा जिस शहर में पुस्तकों तथा महापंडितों का ऐसा अनादर होता हो वहां रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रस्थान का संकल्प लिया। अपने शहर के दरो दीवार पर हसरत भरी निगाह डाली, घास के 2-4 तिनके तोड़कर मुंह में रखे और दिल्ली की ओर चल खड़ा हुआ। सोचा, दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी भी है और कला विद्या राज्यों का राजनीति का केंद्र भी, वह किसी न किसी प्रकार गुजारा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं मत जाइएगा, यही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर विद आरजे अंजलि।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने। उन दिनों दिल्ली चलो का नारा प्रत्येक छोटे बड़े व्यक्ति की जुबान पर था और एक तरह से मैं भी इस नारे से प्रभावित होकर दिल्ली जा रहा था, परंतु यह मालूम न था कि रास्ते में क्या विपत्ति आएगी। रास्ते में एक स्थान पर मैंने देखा एक ढही सरहे दाढ़ी रखे हुए एक छोटी सी गठरी बगल में दबाए एक छोटे से गांव से भागकर सड़क पर आ रहा था। मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए उसे अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तेज तेज कदमों से चलने लगा ताकि उस गांव के फसादी उसका पीछा न कर सके। और हुआ भी यही, मैं बहुत आगे निकल गया और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे कारण एक निर्दोष की जान बच गई। इतने में क्या देखता हूँ कि बहुत से फसादी रास्ता रोके खड़े थे। एक फसादी ने हमारी ओर देखकर कहा, देखो इस बदमाश को, न जाने किस बिचारे का गधा चुराए ले जा रहा है। ढही ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा मगर किसी ने एक न सुनी। उसे फसादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुझे एक फसादी ने बांध लिया और अपने घर की ओर चला। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ गांव पड़ते थे। यहाँ पर कुछ एक दूसरी ओर से फसादी आगे बढ़े। उस बिचारे ने भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन किसी ने एक न सुनी और उसका सफाया हो गया और मैं एक मौलवी साहब के हिस्से में आया। रास्ते में मैंने मौलवी साहब के आगे बहुत अनुनय विनय की, मैं हजरत मुझे छोड़ दीजिए। मौलवी, यह कैसे हो सकता है, तुम माले गनीमत हो। मैं, हुजूर मैं माले गनीमत नहीं हूँ, गनीमत यह है कि मैं एक गधा हूँ, वरना अब तक मारा गया होता। मौलवी ने कहा, अच्छा यह बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान, फिर हम फैसला।

मौलवी साहब ने मुझे मस्जिद के बाहर एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं भीतर चले गए। मैंने मौका गनीमत जाना और रस्सी तोड़कर वहाँ से निकल भागा। ऐसा भागा कि मीलों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैंने यह निश्चय कर लिया था, इन संकीर्ण हृदय व्यक्तियों के झगड़े से एक गधे का क्या संबंध। अब मैं किसी की भी सहायता नहीं करूँगा, अतएव अब मैं दिन भर किसी वृक्ष की घनी छाया में पड़ा रहता या किसी जंगल अथवा मैदान में घास चरता रहता और रात होने पर अपनी यात्रा शुरू कर देता। इसी प्रकार

चलते चलते बड़ी मुश्किल से कहीं 6-7 महीनों के बाद दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के भूगोल का वर्णन संक्षिप्त रूप से करता हूँ ताकि दिल्ली आने वाले यात्री मेरी जानकारी से पर्याप्त लाभ उठा सके और धोखा न खाए। इसके पूर्व में शरणार्थी, पश्चिम में शरणार्थी, दक्षिण में शरणार्थी और उत्तर में शरणार्थी बसते हैं। बीच में भारत की राजधानी है और इसमें स्थान स्थान पर सिनेमा के विभिन्न औषधियों और शक्तिवर्धक गोलियों के विज्ञापन लगे हुए हैं, जिससे यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति की महानता का अनुभव होता है। एक बार मैं चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मैंने एक सुंदर युवती को देखा जो तांगे में बैठी पायदान पर पांव रखे अपनी सुंदरता के नशे में डूबी चली जा रही थी और पायदान पर विज्ञापन चिपका हुआ था। मैं इस दृश्य के तीखे व्यंग से प्रभावित हुए बिना न रह सका और बीच चांदनी चौक में खड़ा होकर काकाहा लगाने लगा। लोग राह चलते चलते रुक गए और एक गधे को बीच सड़क में काकाहा लगाते देखकर हंसने लगे। वे बेचारे मेरी दुष्ट आवाज पर हंस रहे थे और मैं उनकी दुष्ट सभ्यता पर काकाहे लगा रहा था। इतने में एक पुलिस के संतरे ने मुझे डंडा मारकर टाउन हॉल की ओर धकेल दिया। इन लोगों को मालूम नहीं कि कभी कभी गधे भी इंसानों पर हंस सकते हैं। दिल्ली में आने वालों को यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में प्रवेश करने से बहुत से दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा इत्यादि, परंतु आप दिल्ली में इनमें से किसी दरवाजे के रास्ते भीतर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दरवाजों के भीतर प्राय गाय, भैंसे, बैल बैठे रहते हैं या फिर पुलिस वाले चारपाइया बिछाए ऊँगते रहते हैं। हाँ, इन दरवाजों के दाएं बाएं बहुत सी सड़कें बनी हुई है जिन पर चलकर आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में भी एक इंडिया गेट बनाया है, लेकिन इस गेट से भी गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाजे के इर्द गिर्द घूम फिर कर जाना पड़ता है। संभव है दिल्ली के घरों में भी थोड़े दिनों में ऐसे दरवाजे लग जाए, फिर लोग खिड़कियों से कूद कर घरों में प्रवेश किया करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ, आरजे अंजलि के साथ।

दिल्ली में नई दिल्ली है और नई दिल्ली में कन्नौट प्लेस है। कन्नौट प्लेस बड़ी सुंदर जगह है। शाम के समय मैंने देखा कि लोग लोहे के गधों पर सवार होकर इसकी गोल सड़कों पर घूम रहे हैं। यह लोहे का गधा हमसे तेज भाग सकता है परंतु हमारी तरह आवाज नहीं निकाल सकता। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को भेड़ की खाल के बालों के कपड़े पहनते हुए देखा है। स्त्रियाँ अपने मुंह और नाखून रंगती है और अपने बालों को इस प्रकार ऊंचा करके बांधती है कि दूर से वो बिल्कुल गधे के कान मालूम होते हैं। अर्थात इन लोगों को गधे बनने का कितना शौक है यह आज मालूम हुआ। कन्नौट प्लेस से टहलता हुआ मैं इंडिया गेट चला गया। यहीं चारों ओर बड़ी सुंदर घास बिछी थी और उसकी धूप तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मैं 2-3 दिन से तो भूखा था ही, बड़े मजे से मुंह मार मार कर चलने लगा। इतने में एक जोर का डंडा मेरी पीठ पर पड़ा। मैंने घबरा कर देखा, एक पुलिस का सिपाही क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, ये कमबख्त गधा यहाँ कैसे घुसा? मैंने पलट कर कहा, क्यों भाई, क्या गधों को नई दिल्ली में आने की मनाही है? मुझे बोलता देख कर वह सटपटा गया। शायद उसने आज तक किसी गधे को बोलते नहीं सुना था। फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसका आश्चर्य कुछ कम हुआ तो मुझे रस्सी से खींच कर थाने ले गया। थाने में ले जाकर उसने मुझे कांस्टेबल के सामने खड़ा कर दिया। हेड कांस्टेबल ने बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो रामसी? रामसी ने कहा, हुजूर यह एक गधा है। गधा तो है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? हुजूर यह इंडिया गेट पर घास चल रहा था। अरे घास चल रहा था तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि तो कहीं घास चलने नहीं चली गई? इसे यहाँ क्यों लाए हो? ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर देते, इस बेजबान जानवर को थाने में लाने की क्या जरूरत थी? राम सिंह ने रुकते रुकते मेरी और विजय दृष्टि से देखकर कहा, हुजूर यह बेजबान नहीं है, यह बोलता है। अब की हेड कांस्टेबल बहुत हैरान हुआ, लेकिन पहले तो उसे विश्वास न आया, फिर बोला, रामसी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहता है हेड कांस्टेबल साहेब, मैंने धीरे से सिर हिलाकर कहा। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आज अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

हेड कांस्टेबल अपनी सीट से उछला, मानो उसे कोई भूत देख लिया हो। वास्तव में उसका आश्चर्य अनुचित भी नहीं था, क्योंकि नई दिल्ली में ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो इंसान होकर गधों की तरह बातें करते हो, लेकिन एक ऐसा गधा जो गधा होकर इंसानों की तरह बातें करे, हेड कांस्टेबल ने आज तक देखा या सुना नहीं था। इसलिए बेचारा चकरा गया। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। आखिर सोच सोच कर उसने रोजनामचा खोला और रपट दर्ज करने लगा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? गधा। बाप का नाम? गधा। दादा का नाम? गधा। यह क्या बकवास है, हेड कांस्टेबल ने क्रोध पूर्वक कहा। सबका एक ही नाम है, यह कैसे हो सकता है? अब मुझे देखो, मेरा नाम ज्योति सिंह है, मेरे बाप का नाम प्यारेलाल था, मेरे दादा का नाम जीवनदास था। हमारे यहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, ज्योति से मुझे संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, सच कहता हूँ कि हमारे यहाँ नाम नहीं बदलते। जो बाप का नाम होता है वही बेटे का और वही पोते का। इससे क्या लाभ? ज्योति सिंह ने पूछा। इससे वंशावली मिलाने में सुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, क्या आप मुझे अपने परदादा के परदादा का नाम बता सकते हैं? मैंने ज्योति सिंह से पूछा। नहीं, ज्योति सिंह ने अफसोस प्रकट किया, मगर मैं बता सकता हूँ। आपके यहाँ वह आदमी बड़ा खानदानी समझा जाता है जो आज के 400, 600, 800, 1600 साल पहले अपने पुरखे का नाम बता सके। देखिए, मैं आपको आज से 16 लाख साल पहले के अपने पुरखे का नाम बता सकता हूँ, श्री गधा। बोलिए।

0: फिर क्या हम गधे आपसे बेहतर खानदान के हुए या नहीं? ज्योतिषी ने बड़े ध्यान से मेरी ओर देखा। उसका संदेह और बढ़ गया। उसे धीमे स्वर में रामसी के कान में कानाफूसी करते हुए कहा, मुझे यह शख्स बड़ा खतरनाक मालूम होता है। हो ना हो यह कोई विदेशी जासूस है जो गधे के लिबास में नई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। रामसी ने कहा,
1: हुजूर मैं तो समझता हूँ इसकी खाल उतरवा कर देखना चाहिए, भीतर से खुफिया जासूस निकल आएगा, फिर हम इसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे।
0: ज्योतिषी ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन इसके लिए सब इंस्पेक्टर चानन राम की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। चलो इसे उनके सामने ले चले। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, यहीं जुड़े रहिए मेरे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

मेरे कान में भी कुछ भनक पड़ गई थी, लेकिन मैं कान लपेटे चुप रहा और उन दोनों के साथ भीतर के कमरे में सब इंस्पेक्टर चानन राम के सामने चला। चानन राम की मूछें बिच्छू के डंक की तरह खड़ी थी और उसका

0: सुर्ख चेहरा हर समय तमतमाया रहता था। चानन राम को आज तक किसी ने हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे एक योग्य पुलिस अफसर समझते थे। चानन राम ने उसकी पूरी बात सुनकर मेरी ओर घूर कर देखा और कहा, तो तुम पाकिस्तानी के जासूस हो। मैं चुप रहा। चानन राम ने जोर से मेज में मुक्का मारकर कहा, समझ गया, तुम रूस के एजेंट हो। मैं फिर चुप रहा। चानन राम ने दांत पीसते हुए कहा, कमबख्त, बदमाश, कम्युनिस्ट, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वरना जल्दी बताओ तुम कौन हो। यह कहकर चानन राम मुझे मुक्को लातों और ठोकरों से मारने लगा। मारते मारते जब वह बिल्कुल बेदम हो गया तो मैंने जोर से एक दर्द भरी आवाज की। आवाज करते ही वह रुक गया और पहले मेरी और आश्चर्य से देखकर और फिर अत्यंत क्रोध से ज्योति सी और राम सी की ओर देखकर बोला, अरे यह तो बिल्कुल गधा है, और तुम कहते हो यह कोई विदेशी जासूस है, तुम मुझसे मजाक करते हो, मैं अभी तुमको डिसमिस करता हूँ। राम सी और ज्योति सी दोनों भय से थरथर कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोली, हुजूर अभी यह बाहर के कमरे में बोल रहा था, साफ साफ बोल रहा था, बिल्कुल इंसानों की तरह।
1: तुमने सपना देखा होगा या काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। जाओ इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ और कांजी हाउस में बंद कर दो। अगर 3-4 दिन में इसका मालिक न आए तो नीलाम कर देना।
0: मैं खुशी खुशी बाहर आया, मेरी चाल काम कर गई। अगर मैं भूलता तो वे लोग निश्चय ही मेरी खाल उधेड़ कर देखते कि भीतर कौन है। इसके बाद 3-4 दिन तो क्या, एक हफ्ते तक कोई मालिक न आया, फिर मुझे नीलाम कर दिया। अब कि मुझे रामू धोबी ने खरीद लिया, जो यमुना पार कृष्णनगर में रहता था। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तो जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।